फुटबॉल के महाकुंभ यानी फीफा वर्ल्ड कप जो कि यूएसए, मेक्सिको और कनाडा में खेला जा रहा है, में कल दो शानदार मैच खेले गए। पहला मैच 5 बार विश्व विजेता ब्राजील और नॉर्वे के बीच खेला गया। नॉर्वे ने शानदार फुटबॉल खेलते हुए ब्राजील को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया। अर्लिंग हालैंड ने 79 और 90th मिनट में गोल मारकर नॉर्वे को 2-0 की बढ़त दिलाई थी। ब्राजील को 100th मिनट में पेनल्टी मिली जिसको नेमार ने खूबसूरती से गोल मारकर मैच 2-1 पर ले आए, परंतु समय नहीं बचा और नॉर्वे ने ये मैच अपने नाम कर लिया। फर्स्ट हाफ में ब्राजील को एक और पेनल्टी मिली थी लेकिन ब्रूनो गिमराइस गोल नहीं कर पाए। इस जीत के साथ नॉर्वे अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में नॉर्वे क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा है और नॉर्वे के लिए ये बहुत गर्व की बात है। जहां तक ब्राजील की बात करें तो काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा और 1990 के बाद ये पहली बार है जब ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंच पाया। इस हार के साथ ब्राजील का नॉर्वे के अगेंस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड और खराब हुआ। मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि नॉर्वे ऐसा अकेला देश है जिसके साथ ब्राजील कई बार खेला है लेकिन हरा नहीं पाया है। ब्राजील नॉर्वे से आज तक 5 मैच खेला है जिसमें से उन्होंने 2 मैच हार गए हैं और 3 बार मैच ड्रॉ रहा है।

चलिए अब बात करते हैं कल रात के दूसरे रोमांचक मैच की, जो कि मेक्सिको और इंग्लैंड के बीच मेक्सिको सिटी में खेला गया। ये मैच शुरुआत से ही काफी तेजी और रोमांच भरा रहा। इंग्लैंड के जूड बेलिंगम ने 90 सेकंड में दो गोल मारकर इंग्लैंड को 2-0 की बढ़त दिलाई। जैसे ही इंग्लैंड को लगने लगा कि उनकी क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की होती दिख रही है, मेक्सिको के क्विनोनेस ने 42nd मिनट में हाफ टाइम से पहले गोल मारकर मैच 2-1 पर ले आए। सेकेंड हाफ में बस 9 ही मिनट बीते थे जब इस मैच में एक और दिलचस्प मोड़ लिया। 54th मिनट में इंग्लैंड के क्वांसा को एक हैवी टैकल के चलते रेड कार्ड दिखाया गया। इंग्लैंड के अब बस 10 प्लेयर फील्ड पर बचे थे और मेक्सिको को लगा कि यही मैच को बराबरी पर लाने का अच्छा मौका है, परंतु 60th मिनट में मेक्सिको के गोलकीपर ने इंग्लैंड के एंथनी गॉर्डन को पेनल्टी बॉक्स में गिरा दिया और इंग्लैंड को पेनल्टी मिल गई। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन आगे आए और एक शानदार पेनल्टी के साथ गोल मारकर इंग्लैंड को मैच में 3-1 की बढ़त दिलाई। जैसे ही ये लगने लगा कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा, मेक्सिको के राउल हिमिनेज ने 69th मिनट में पेनल्टी मारकर मैच को 3-2 पर ले आए। अगले 20 मिनट तक मेक्सिको कोशिश करता रहा लेकिन गोल नहीं कर सका। इस जीत के चलते इंग्लैंड फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और उसका अगला मुकाबला नॉर्वे के साथ 11 जुलाई को होगा।

बड़ा और दिलचस्प मुकाबला आज डैलस स्टेडियम में पोर्चुगल और स्पेन के बीच खेला जाएगा। स्पेन की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले फ्रांस और अर्जेंटीना के साथ स्पेन भी प्री टूर्नामेंट फेवरेट थे ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए। स्पेन की टीम में फुटबॉल जगत के सुपरस्टार्स भरे हुए हैं और स्पेन ये जरूर चाहेगा कि इन बड़े मैचों में उनकी टीम के बड़े खिलाड़ी आगे आए और शानदार प्रदर्शन दिखाए। सारी नजरें स्पेन और बार्सिलोना के खेलने वाले चाइल्ड सेंसेशन लामिन यमाल पर होगी। सुपरस्टार्स की बात कर हो ही रही है तो पोर्चुगल कैसे पीछे रह सकता है। लोकप्रिय खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो यानी CR7 पोर्चुगल की तरफ से खेलते नजर आएंगे। CR7 अपना पहला वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वर्ल्ड कप रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। पोर्चुगल में मैन यूनाइटेड के कप्तान और सुपरस्टार ब्रूनो फर्नांडेस और PSG के विटिनिया और जाओ नेवेस रोनाल्डो और पोर्चुगल को क्वार्टर फाइनल तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। स्पेन और पोर्चुगल आपस में 4 बार खेल चुके हैं जिसमें दोनों टीमें एक एक मैच जीते हैं और बाकी 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर आज रात इस मैच पर होगी तो देखते हैं क्वार्टर फाइनल में कौन अपनी जगह बनाता है।

0: आज खेले जाने वाले दूसरे मैच होस्ट नेशन यूएसए और बेल्जियम के बीच सिएटल में खेला जाएगा। यूएसए अच्छी फॉर्म में चल रहा है और ये मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्का करना चाहेगा। आज सुबह ही खबर आई है कि फीफा ने यूएसए के स्टार प्लेयर फ्लोरियन बोलोगुन के रेड कार्ड का सस्पेंशन पोस्टपोन कर दिया है, जिसका मतलब है कि वो आज इस मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे और ये मैच खेल सकते हैं। बेल्जियम की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और वो अपने सुपरस्टार्स केविन डी ब्रुइने, लियोनार्डो ट्रोसार्ड, लुकाकू जैसे प्लेयर से अच्छा प्रदर्शन की कामना करेंगे। इस मैच के विजेता स्पेन और पोर्चुगल के मैच के विजेता के साथ क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।